0: Monsieur Desmond Doyle, pourriez-vous demander au Sherpa Chumbi de nous imiter le cri du Yeti?
1: साबले चाइन्स जो तिमी यति को आवाजले अलि गर्न सक्छ कि सक्दैन गर्न सक्छ ल गरौँ
2: क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक